भगवान का खला खींचा अरदास, सर्वत समोखालसे जी की अरदास, श्री वाहेगुरु जी के पास जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रक्षा रियाय, विरद की पाए द्रह पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय, खालसे जी दे बोल वाले बोला रे, खालसे जी का मानी वा मातु ची मात पत दा राखा आप, वाहेगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चेत आवे चेत आवन का सदका सर्व सुख होवे, खालसे जी की देख तेग फतह, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे, धर्म का जयकार खालसा री सावे बोला रे, खालसे जी नु नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रात रक्षा दान, खालसे जी नु श्री हरिमंदर साहिब अमृत सार सरोवर जी दे शनान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बोला रे, श्री अकाल तख्त साहिब जी बाबा अटल जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर जी काल सर जी तरन तारण दी तापयाने दी खडूर जी गुरु की बावली, श्री गोविंदवाल साहिब जी दे शनान दर्शन दीदार मेले बोला रे, थम जी ननकाने जी करतारपुर जी श्री बाबे नानकडेरे जी तख्त केसगढ़ साहिब आनंदपुर जी कीरतपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकौर जी दमदमेर जी तम तान जी मुकतसर साहेब पामटा साहेब तख्त पटना साहब हरिमंदर दिल्ली में सीस गंदर काब गंडवाला साहेब बंगला साहेब।

भूत बन चारि चित छौना सब दूत धारी पौन के आहारि सो भुजंग जानी अत है। तृण के बछैया धन लोभ के तजय ते तु गौ वन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उड़िया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला विडाल वृक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी ते नौ जानी व बखानी नाहे ऐसना प्रपंच मन भूल अनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सो जिरैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदस फिरैया ते तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को कंगेरी सी कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि

न्योलि करम जल होम पावक पावन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है मान व फनिंद देवता नव न पावे भेद भेद योग तेब नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा विष्ण कित वेद और पुराण कित सिमृत समूहन के होय होय बिताय है मून दी मदार कित्य असुनी कुमार कित्य अंश अवतार कित्य काल बस भय है पीरे ओ पिकम्बर कित्य गंध न परत ते भूम ही ते हुई के फिर भूम ही मिलाए है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीप औदलीप कैसे छत्रधारी बड्डो अभिमान भुज दंड को करत है दार से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप चीक पट बेस पोसती अनेक दानी वावत है शीस को काह भयो मल्ल जोप काढ़त अनेक दंड सोत न डंडौत अस डांग अथ तीस को कहा भयो रोगी जो पे डारे रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने हो रायो आदिस कहो कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कहो शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आक को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भोक सौ कहा भयो भेड़ जो कसत शेष वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जोग सौ कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो ही करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश विचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलिन भावना यकीन दिन कैस के तरत है जैसे एक सोंगी कहूँ जोगी या बैरागी बन कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार की दर पुकारे पर शीतकाल कुंचर ओगा दहा

ताप के सहित जो पाई है अताप नाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो पाए जाप देव बूदना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाई है अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बास की उपजंग न तरत है। को भयो मंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सोई रस करही मोई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो। एक ही की सेव सब ही कुगुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पय अनेक को भ्रमाओ है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन।

जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनू का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज के तक प्रताच हो।

तेज ज्यों तेज मया तेज जैसे तेज लीन ताहि तयो बज सब ताहि मैं समाहिंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल मैं डुबत कित आग मैं जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के फरमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम मैं गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को बरत है। ज्ञान मैं उड़त कित जल मैं रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तप

न कर्मं न वर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं वेखं जोनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्धरूपं।

नमो हंग नमा तंग न कर मंग न भर मंग न जन मंग न जातंग अद्वैखंग वेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग छयाद अद्वै अविनाशी न जातंग न बातंग न रूपंग न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे।

स्नेह सनाथ उदंडे मंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न बाते न सत्र न मित्र सोभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं अपेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न केहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वया जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभयनिर्विखादं अछेदं अभेदं।

परमं सदैवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद विक्ते यथा वैभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सतं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के वेश के धर्म धामे कहूं राज के सा

तेज अंशित जगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म।

जो गरीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जाछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई बचत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदवतास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदवदेश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं भरत पान बहु करत हो मर जा।

चार चतुर्देश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रे खरुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज मृतंग जय पार न पावत पूर्मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण।

गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अदोग दाग तक है अभूत ब्रह्म भेक है न तात्मात जात है न पात चिहन वरण है अदेक शेक भेक है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के बिगे सदीव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाद जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेख अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नेत नेत कै बतावई न कर्म में न धर्म

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अवेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैख है न वेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानी है भूम अभिज है सदा छिज तेज है अच्छे प्रताप देखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न ब्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रे खरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि न राधपि ग्रंथ सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बडे तपस्त भी विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानी है न जात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानी है सदीव सर्वलोक के

रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन आदनाद अगात पुरक सुधरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र ने तंत्र जाको आद पुरक अपार हस्त कीट बिखे बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखेर में उजे चक्र चहन न चित्र आद देव उदार मूर्त अगाद नात अनंत आद अंत न जानी अपखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सन कौ सन के सनंदन पाव ही न सेब जछ किन्नर मछ मार समुर्ग और का पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्रो मुख चार सर्व सपत पतार के तर जाप ही जह जाप आद देव अगाद तेज अनाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीण जाछ गंधर्व देव दानो न भ्रम क्षत्रिय न माहे वैसन के विखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ अभील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जात्रन देव पूजा घोर के नाधीन सर्व सपत पतार के दर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस वर्ण नेत पूर्ण होत सोद सोद हट्टे सब असुर विरोध दानव सरब गाय गाय हट्टे कंदरब गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागप करत गाड़ अनंत हार हार कहे सबू मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पा

पार भूमा का जले थले मेहमानी है जह नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम, दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद। मित्र बालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद। अघो दंडन दुष्ट खंडन काल मुके काल, दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल। सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हरता विश्व भरता आदि रूप अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड, श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार। आद देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार।

को सूरा सुंदर कवन कहां जो को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार विचार। तो प्रसाद दीर्घ त्रिभंगी छंदन असुर बिहंडन निकंदन आदि वृते जछरा सुर मारण धारण नरक निवारण गुड़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते। जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन रम कबरदन छते रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुन सन मैग मथे दान प्रहारन नरक निवारण नथ मुद

डावरूढ़वंगे बभ्रभवंगे भुजाभरंगे तेज भरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमगे अति चमके फूंक फनंग जय जय हो से मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण ध्वजा फरंकण फणि फुंगारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दे दामनी ब्रहासन सुछब निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नरा चंदन अमृते श्रोणत चिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय ओ सी मैं खासुर मर्दन पाप बिना संदरम करे अंग उग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते पणियर भंकारण बाघ बकारण सत प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन हर्ष प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलन जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा काक पताल जलन चाचर चमकारन चिच्छुर हारण धूम धुम कारण द्रप मथे दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मृज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन परम बिना संदरम दुजे तुंगुरु गमंगण सत्रज मंगण फणि अर्पुंकारण धरम दुजे अष्टाट प्रहासन कृष्ण निवासन दुष्ट वृणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमधाहे एक वृते जय जय हो सी मैं खातुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नरमोहन सिंगारोहण वितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण नदम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तपय दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्क तमत प्रतापन जय

के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो से रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोज बिसोजन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे शुभ्र सुभा।

लाजे गिल विख बाजे सुकूप राजे मधुरंग दुर्जन दल दजे मंथन रिझ सब न भजे रोहरणं जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन चंड चक्र धन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्यय धूमराज विद्वंसन प्रलय प्रजुन संजय।

कत्रियाण कतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रलाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो से मासुर मर्दन विश्व विदिष्ट करे दामने प्रकाशे उन्दर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकर खण सर्वर वर्खण दुष्ट प्रदर्खण बितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो से मासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रता हे अर्ध लगा हे दुख हरे।

जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार जानी न जाए जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन फेक कहे नाम तास है कवन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चरण नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेजन बिजदाग जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाए जय पैर पार दीनान दोग तहता उदार

दीनन की व्रत पाल करे नित संधु बारक नीमन गारे पछ पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सबको व्रत पार है। पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत न हारे। दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के बल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम के ब्रीत संभारे। पार न पाए सके पदमावत भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो खुरुहान की रोज नटारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देवा देवक पे अंग मेव न भेव लख्यो भ्रम से उभरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसे बथके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पुत स्यो किन श्री पदमापत पाए। आद आनंद अगाध द्वेक सो भूत भवेख भवान अभय है अंत भीन अनाथ मापद अगाध ओख छिद्र जय है। लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह भीन स्नेह सबोतन नेह विरक्त गेह छय है। जान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पद्मापत ले है। रोगंते और सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक जलावत खावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दह कर पाप सम्मोहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सो सो भेट ही के बट बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा का पताल रसातल जाच भुजंग सब है सरण्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो वेद कतेव न भेद लखेव सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्वाण सब बजहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाध बेगद वैख जप्योत नहीं गुलतारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेष बोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख

अत्र के चलैया चित्त छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। अवसान के देवैया है कटैया जम जाल।

बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाले दिल्ली के दिल वाले तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुदेल बाब पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीश ने